0: 作ったんだろう。
1: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
3: अब हम इस मुकालमे की वजाहत करते हैं।
4: मियां बर्फ से बने शानदार किले को देखकर मबहूत रह गई है। वो ताम से कहती है,
2: सुगोई।
3: शानदार।
2: ताम, मीते मीते।
3: ताम, देखो देखो।
4: ताम भी फन पारे से मुतासिर है।
1: ओ, की देसने।
3: ओ, बहुत बड़ा है।
1: हजिमेते मीमास्ता।
3: मैंने पहली बार देखा है।
4: कायतो बर्फ के उस फन पारे को देखकर कहता है,
0: तो यत्ते त्सुकुत्तान दारो।
3: किस तरह बनाया होगा?
4: ताम कहती है,
1: किरे देसने।
3: बहुत खूबसूरत है।
1: मीन्ना दे शशिन ओ तोरिमाशो।
3: सब साथ मिलकर एक तस्वीर बनाएं।
4: मिया को ये बात पसंद आती है। वो कहती है,
2: ई ने।
3: अच्छी तजवीज है।
4: मैंने भी सपोरो बर्फ मेले की बहुत तारीफ सुनी है।
3: ये शानदार मेला हर साल फरवरी या उसके करीबी दिनों में मुनक्किद होता है। इसमें कुदरती और मसनूई बर्फ से बनाए गए कई सौ फन पारे होते हैं। बास बड़े शपारे तो 15 मीटर तक बुलंद होते हैं।
4: बर्फ से इतने बड़े बड़े मुजस्मे और दीगर फन पारे बनाना यकीनन एक मुश्किल काम होगा।
3: फन पारे बनाने वाली टीमें उस मकाम पर किसी इमारत की तामीर की तरह बांसों या पाइपों से परात बांधती हैं और बर्फ ढेर करने के लिए क्रेन इस्तेमाल करती हैं। पहले मुजस्मे या किसी इमारत वगैरह के फन पारे को उमूमी शक्ल दी जाती है और उसके बाद बारीक तराश खराश की जाती है। फन पारों की तकमील में कई माह का अरसा लगता है।
4: फिर तो सपोरो बर्फ मेला वाकई देखने से ताल्लुक रखता है।
3: जी हाँ, बिल्कुल।
4: आज के सबक का कलीदी जुमला है, तस्वीर बनाएं।
1: शशिन ओ तोरिमाशो।
4: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए मिलकर कोई काम करने की तजवीज दे सकते हैं।
3: शशिन के मायने है तस्वीर। शशिन ओ तोरिमाशो, तस्वीर बनाएं या तस्वीर खींचें। आज का नुक्ता, आइए मिलकर ऐसा करें, यह कहने के लिए फेल की मस शक्ल के मस को माशो में तब्दील किया जाता है। कलीदी जुमले में शाशिन ओ तोरू यानी तस्वीर खींचना का फेल तोरू, जिसकी मस शक्ल तोरी मस है, माशो शक्ल में इस्तेमाल हुआ है, यानी तोरी माशो।
4: तो सामेइन सुनिए और दोहराइए।
5: तोरी माशो, शाशिन ओ तोरी माशो, शाशिन ओ तोरी माशो।
4: जी सामेइन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
3: और अब एक मकालमा सुनिए जिसमें एक खातून दोस्तों को मिलकर दुकान में दाखिल होने की तजवीज दे रही है।
6: कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
1: ई देसने।
3: अब इस मकालमे की तशरीह।
6: कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
4: आए इस दुकान में दाखिल हों।
3: कोनो मिसे यानी ये दुकान, इसके बाद का हर्फ जार नी सिमत को जाहिर करता है, चुनांचे इसका मतलब हुआ इस दुकान में। हायरु के मायने है दाखिल होना। फेल हायरु की मस शक्ल है हायरी मस, जो यहाँ माशो शक्ल में इस्तेमाल हुआ है, यानी हायरी माशो।
1: ई देसने।
4: अच्छी तजवीज़ है।
3: ये जुमला मुखातिब की बात से इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ई तो आपको याद ही होगा यानी अच्छा। जुमले के आखिरी हिस्से का दिस इसे शाइस्ता बनाता है और बिल्कुल आखिर में ने इत्तेफाक को जाहिर करता है।
4: तो सामेइन सुनिए और दोहराइए।
5: हाइरिमाशो, कोनो मिसे नी हाइरिमाशो, कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
3: अब एक साथ कुछ करने की दीगर तजावीज के साथ मश्क करते हैं। आप सपोरो के मशहूर सैयाहती मकाम घंटाघर जाना चाहते हैं। घंटाघर की जापानी है
5: तोकेदाई, तोकेदाई।
3: फेल जाना यानी इकू की मस शक्ल है
5: इकीमस, इकीमस।
3: तो आए घंटाघर चलें को कैसे कहेंगे?
7: तोकेदाई नी इकीमाशो, तोकेदाई नी इकीमाशो।
3: आप चलते चलते थक चुके हैं और कहना चाहते हैं आएं कुछ देर आराम करें। कुछ देर को कहते हैं
5: चोत्तो, चोत्तो।
3: फेल आराम करना की जापानी है यासुमु और इसकी मस शक्ल है
5: 休みます。休みます。
3: とさみん、こししかれん。
7: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
4: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमले बना लिए होंगे।
3: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज मकालमे में मियां ने बर्फ के फनपारे को देखकर कहा था। ये सिर्फ एक मुख्तसर सा लफ्ज है, लेकिन है बहुत कारामद, इसे याद कर लें।
2: सुगोई।
3: सुगोई के मायने है शानदार या हैरत अंगेज। ये कोई चीज देखकर हैरत से दंग रह जाने या इंतहाई मुतासर होने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है।
4: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
8: سگوئی
9: سگوئی
10: سگوئی۔
4: سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
5: سگوئی۔
3: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام مل کر تصویر بنانے کی تجویز دیتی ہے۔
2: سگوئی ダム、見て見て。
1: ああ、大きいですね。初めて見ました。
0: どうやって作ったんだろう。
1: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
4: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ۔ آج کا موضوع جاپان کا سر فہرست سیاحتی مقام ہوکائیدو ہے۔
3: ہوکائیدو جاپان کا سب سے شمالی پریفیکچر ہے۔ وہاں وسیع و عریض میدانی علاقے بھی ہیں، دلدلی خطے بھی، سہرنگیز خوبصورت جھیلیں بھی اور قدرتی گرم چشمے بھی۔ ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد وہاں جاتی ہے۔ ملک کے باقی علاقوں کے برعکس ہوکائیدو میں موسم برسات نہیں ہوتا اور گرمی بھی کم پڑتی ہے۔ یہ خصوصیات اسے زیادہ مقبول بناتی ہیں۔
4: اچھا انور صاحب، ہوکائیدو کے کچھ قابل دید مقامات کے بارے میں بھی بتائیں۔
3: فرانو میں لیونڈر کے خوبصورت کھیت ایک مقبول مقام ہے۔ جولائی میں پہاڑی ڈھلانوں پر تحد نگاہ ہلکے اودے رنگ کا قالین سا بچ جاتا ہے۔
4: واہ، یہ منظر تو واقعی خوبصورت ہوگا۔
3: یقیناً۔ اس کے علاوہ یونیسکو کے عالمی قدرتی ورثہ مقام شیرے توکو میں گلہریاں اور لومڑیاں وغیرہ جنگلی حیات کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کشتی کا ٹور لیں تو ویل مچھلیوں اور بھورے ریچھوں کا نظارہ بھی ممکن ہے۔
4: سگوئی، حیرت انگیز۔ ویسے ہوکائیدو کی سردیاں تو منجمد کر دینے والی ہوں گی۔
3: جی ہاں، سردیوں میں وہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت منفی ہوتا ہے، لیکن اسی وجہ سے برف میلے یا سرمائی کھیلوں سے بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اور اساہیکاوا شہر کے اساہیاما چڑیا گھر میں برف پر قطار میں چلتے ہوئے پینگوئن بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
4: شاندار۔ بس تو پھر ہوکائیدو کو میں نے اس فہرست میں شامل کر لیا جہاں میں نے مستقبل میں جانا ہے۔
3: ہوکائیدو کے کھانے بھی شاندار ہیں۔ صرف سمندری خوراک ہی نہیں بلکہ وہاں رامن اور مٹن کی ڈشیں بھی مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ ہوکائیدو تازہ سبزیوں اور پھلوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ وہاں کے یوباری خربوزے، مکئی اور آلو خصوصاً مشہور ہیں۔ ہوکائیدو کا سفر ہر لحاظ سے پرلطف ہوگا۔

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

ये भूकंप मंगलवार शाम 4:27 पर कुमामोतो प्रीफेक्चर में आया। जापान के भूकंप मापी पैमाने पर इसकी तीव्रता 7 दर्ज की गई, जो सर्वोच्च स्तर है। इससे पहले 2024 में नववर्ष के दिन नोतो प्रायद्वीप में ऐसा भूकंप आया था। क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का कहना है कि सागा प्रीफेक्चर स्थित गेंकाई परमाणु बिजली घर या खागोशिमा प्रीफेक्चर स्थित सेंदाई परमाणु बिजली घर में अब तक कोई असामान्यता नहीं मिली है। कंपनी का यह भी कहना है कि इन बिजली घरों के आसपास विकिरण के स्तर में भी कोई बदलाव नहीं आया है। क्यूशू रेलवे कंपनी का कहना है कि भूकंप के कारण क्यूशू शिंकानसेन सहित उसकी सभी रेलगाड़ियों की सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने अरियाके और यात्सुशिरो सागरों के तटीय इलाकों में जारी सुनामी संबंधी परामर्श मंगलवार शाम 6:10 पर वापस ले लिया। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने यूक्रेन के प्रति अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। सोमवार को पोर्ट्समाउथ स्थित नौसैनिक अड्डे पर बोलते हुए बर्नहम ने यूक्रेन के प्रति ब्रिटेन के समर्थन पर बल दिया और कहा, हम 100% यूक्रेन के साथ हैं। राष्ट्रपति महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से 100% आपके साथ हूं और मैं ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को किए गए हर वायदे का पूरा सम्मान करूंगा। बर्नहम ने यह भी कहा कि वे ब्रिटेन के एक नए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तंत्र की बौद्धिक संपदा साझा करने की योजना बना रहे हैं, जो लक्ष्य भेदने और यूक्रेनी लोगों की जान बचाने में यूक्रेन की मदद करेगा। सरकार के अनुसार इस तंत्र में टैबलेट के आकार के इलेक्ट्रॉनिक जैमर का उपयोग किया जाता है। जिन ड्रोन विमानों में ये उपकरण लगे होंगे, रूसी वायु रक्षा प्रणालियां उनका पता नहीं लगा पाएंगी। सरकार का कहना है कि तकनीकी जानकारी प्राप्त कर यूक्रेन स्वयं इन उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर लगभग 2 सप्ताह तक चले हवाई हमले रोक दिए हैं। उन्होंने सोमवार को अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस को बताया कि वे बातचीत को एक और मौका देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कि अगर बातचीत विफल हुई तो अमेरिका कड़ी सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच बेहद गहन वार्ता चल रही है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि वे राजनय पर ज़्यादा समय खर्च करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि या तो बातचीत तेज़ी से आगे बढ़ेगी या बिल्कुल नहीं। बाद में ट्रंप ने पत्रकारों से इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि बातचीत अच्छी चल रही है, इसलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। काफ़ी संभावना है कि कुछ हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अच्छा है, अगर नहीं तो हम पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में इन हालातों की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया है। उन्होंने कहा, मध्यस्थ देश क्षेत्र के मौजूदा घटनाक्रमों के बारे में अमरीकी पक्ष का संदेश हमें दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिकी पक्ष के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाई ने संसद के विशेष सत्र के समापन के बाद सोमवार को पत्रकारों से बात की। ताकाइची ने कहा कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में मतदाताओं से जो चुनावी वायदे किए थे उन्हें पूरा करने पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, संसद के इस विशेष सत्र में मेरा लक्ष्य अपने चुनावी वायदे पूरे होते देखना था। सरकार द्वारा प्रस्तुत सभी 64 विधेयक हालिया सत्र में पारित हुए। इनमें राष्ट्रीय खुफिया परिषद स्थापना अधिनियम और संशोधित शाही घराना कानून से जुड़ा विधेयक भी शामिल रहा। ताकाइची ने पत्रकारों को ये भी बताया कि उनका प्रशासन कमजोर होते येन और बढ़ती महंगाई की शिकायतों से कैसे निपटेगा। उन्होंने कहा, हमें आर्थिक विकास और वित्तीय अनुशासन में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है, हम दोनों हासिल कर सकते हैं। एक जिम्मेदार और सक्रिय

0: नीति का अर्थ यही है। हम बाजार के साथ पारदर्शिता से सावधानी पूर्वक संवाद करके उसका विश्वास हासिल करेंगे। ताकाइची के प्रमुख चुनावी वायदों में से एक था 2 साल तक खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर में भारी कटौती करना, ताकि देशवासियों को कुछ राहत दी जा सके। ये मुद्दा अब सर्वदलीय राष्ट्रीय परिषद की कार्यकारी स्तर की बैठक में विचाराधीन है। ताकाइची ने इस चर्चा के जल्द ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की आशा व्यक्त की। जापान सरकार ने हाई रिस्क स्टॉकरों के लिए जीपीएस ट्रैकिंग उपकरण अनिवार्य बनाने पर तत्काल विचार करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को अपराध रोधी बैठक में संबंधित मंत्रियों ने आपात उपायों को मंजूरी दी, जिसमें इस कदम को शामिल करने के लिए कानूनी संशोधनों की संभावना भी है। प्रतिभागियों ने इस बात का संज्ञान लिया कि ऐसे स्टॉकर जिनके द्वारा गंभीर अपराध किए जाने का खतरा अधिक है, उनके पीड़ितों को ये जानकारी होनी चाहिए कि स्टॉकर कहाँ है, ताकि वे उससे संपर्क में आने से बच सकें। अधिकारी स्टॉकर के आसपास आने पर पीड़ितों के स्मार्टफोन पर सूचना भेजने जैसे सिस्टम पर विचार कर रहे हैं। वे अन्य देशों में उपयोग की जा रही प्रणालियों के तकनीकी और परिचालन संबंधी पहलुओं की जांच करेंगे। ऐसे मामले सामने आए हैं जब पुलिस द्वारा स्टॉकर को पीड़ित से संपर्क न करने के आदेश जारी करने के बाद भी स्टॉकर ने गंभीर अपराधों को अंजाम दिया। इन मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी का कहना है कि 2025 में जापान भर के पुलिस विभागों को स्टॉकरों से जुड़ी लगभग 23,000 शिकायतें मिली, 1,546 मामलों में गिरफ्तारियां हुई और 3,037 मामलों में निषेधाज्ञा जारी की गई। ये सभी मामले रिकॉर्ड उच्च हैं।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK World Japan।